वो रोज़ाना माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितना चढ़ते थे। अंदाजों के मुताबिक कैदी रोज़ाना 6 घंटे इन ट्रेडमिल्स पर गुजारते थे। ये औसतन 1500 से 4200 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के बराबर है। 4267 मीटर की बुलंदी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट का आधा रास्ता है। क्यूबिटा ये डिज़ाइन बरतानवी सल्तनत की सरहदों को पार करके अमेरिका में भी तेजी से फैल गया। इस शदीद मशक्क़त के मिलाप ने ज़्यादातर कैदियों को माजूर और ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। ट्रेडमिल 19वीं सदी की जेलों के बुरे हालात की अलामत बनकर रह गई। इसके नतीजे में 1898 में ट्रेडमिल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। में अमेरिका में पेटेंट होने वाले ट्रेडमिल का तिब्बी इस्तेमाल बहुत बाद में यानी 1952 में डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस ने अपने एक साथी पर तजुर्बात करने के बाद शुरू किया। डॉक्टर ब्रूस के इन तजुर्बात ने इस टेस्ट की बुनियाद रखी जिसे आज ब्रूस कहा जाता है, जिससे ये मालूम किया जाता है कि दिल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। 1960 और 1970 की दिहाइयों में कार्डियो वर्जिश के मकबूल होने के साथ ही ट्रेडमिल्स पहले जिमों में और फिर हमारे घरों में दाखिल हुईं। इस तरह हैरत अंगेज और तंज आमेज तौर पर एक जमाने का तशद्दुद का आला आज सेहतमंद जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो क्या आप जानते थे कि आज जिम में इस्तेमाल होने वाले ट्रेडमिल के पीछे इतनी तारीख छुपी हुई है? हमारे अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।

जब हम किसी नक्शे को देखते हैं तो वहाँ मौजूद ज़्यादातर नामों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते। पहाड़ों, दरियाओं, शहरों या मुल्कों के नाम होते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे ये नाम हमेशा से ही वहाँ मौजूद थे। हालांकि हर नाम की अपनी एक अलग कहानी होती है। कोई नाम किसी हुक्मरान के फैसले से एक ही रात में वजूद में आ जाता है तो कोई उस सरजमीन पर रहने वाली किसी कदीम कौम की यादगार बनकर रह जाता है। और कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो हज़ारों साल तक ज़बाँ ब ज़बाँ और नक्शे से नक्शे पर मुंतकिल होते रहते हैं। आज हम जिस कहानी के पीछे निकल रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी ही है। ये सिर्फ एक लफ्ज़ की कहानी है, फिलिस्तीन। आखिर ये नाम पहली बार कब और कहाँ सामने आया? इसे सबसे पहले किसने बोला और किसने लिखा? और ये इतनी सदियों तक नक्शों से क्यों नहीं मिट सका? दरअसल हमारा बुनियादी और असल सवाल ये है, ज़मीन का एक टुकड़ा तारीख में कितने मुख्तलिफ नाम अपने दामन में समेट सकता है? इस प्रोग्राम में हमारा मकसद सिर्फ बड़े तारीखी वाकयात को बयान करना नहीं है, बल्कि हम उन तफसीलात और छोटे छोटे इशारों पर नज़र डालेंगे जो आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। हम पुराने नक्शों का जायज़ा लेंगे और पत्थरों पर खुदी हुई तहरीरों को पढ़ेंगे। हम उन भूली बिसरी ज़बानों के निशानात तलाश करेंगे और ज़मीन दोज कदीम शहरों की सैर करेंगे। हम कदीम बंदरगाहों का रुख करेंगे और पुराने काफ़िलों के रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे दिलचस्प कहानियाँ इन चीज़ों के अंदर छुपी होती हैं जिन्हें हर कोई पहले से जानता हुआ समझता है। और हमारे इस सफ़र की पहली मंजिल यही नाम है, यानी फिलिस्तीन। ये जानना फ़ायदेमंद है कि आज हम जो लफ्ज़ फ़िलिस्तीन इस्तेमाल करते हैं वो आम तस्वुर के बरअक्स कोई हालिया तारीख का नाम नहीं है। जब हम इस लफ्ज़ के निशानात तलाश करते हैं तो हम आज से तकरीबन 3000 साल पीछे चले जाते हैं। मुहक्किकीन को मिस्र की इबादतगाहों की दीवारों पर बने हीरो गलीफी खताती के नक्शो नगार में एक लफ्ज़ मिलता है, पहले सेट। मौरखीन इस नाम को इन ग्रोहों में से एक से जोड़ते हैं जिन्होंने उस दौर में बहिरा रूम को अबूर करके इन साहिलों पर सकूनत इख्तियार की थी और जिन्हें समुद्री अकवाम के नाम से जाना जाता है। बहुत से माहरीन के मुताबिक नाम फिलिस्तीन की कहानी बिल्कुल यही से, यानी इन्हीं साहिलों से शुरू होती है। लेकिन मामला इससे थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि ये सरजमीन नक्शों पर फिलिस्तीन के नाम से दर्ज होने से बहुत पहले भी जानी जाती थी। एक वक्त था जब इसे कनान कहा जाता था। दूसरे अदवार में मुख्तलिफ मिट्टी की तख्तियों पर अमूरों का नाम भी मिलता है। इस खत्ते से गुजरने वाले ताजरों ने अलग नाम इस्तेमाल किए और हमसाया सल्तनतों ने अपने रिकॉर्ड में मुख्तलिफ नाम लिखे। जैसे जैसे सल्तनतें बदलें वैसे ही सरहदें और नक्शे भी बदल गए, लेकिन ये जुग्राफिया खुद हमेशा एक जैसा ही रहा। बहिरा रूम के मशरक़ी साहिल पर वाक़ ज़मीन की ये तंग पट्टी तारीख भर में दुनिया के मुतहरक तरीन गुजरगाहों में से एक बनी रही। सदियों बाद तारीख के स्टेज पर रोमन सल्तनत नमूदार हुई। रोम सिर्फ एक ऐसी फौजी ताकत नहीं था जो शहर बसाता और सड़कें बनाता था, बल्कि वो उन जगहों को नया नाम भी दिया करता था जिन्हें वो फतेह करता था। और बाज़ औक़ात एक नाम फौजों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तवील उम्र पाता था। ईसवीं सन की दूसरी सदी में हमें रोमन रिकॉर्ड में एक नया नाम नज़र आने लगता है ईसवीं सन की दूसरी सदी में हमें रोमन रिकॉर्ड में एक नया नाम नज़र आने लगता है सीरिया पैलेस्टीना। यह नाम वक्त के साथ साथ सरकारी दस्तावेजात में शामिल हो गया, नक्शों पर उतारा गया और जुग्राफिया की किताबों का हिस्सा बन गया। रोमन सल्तनत के जवाल के बाद भी सदियों तक इस सरजमीन को इसी नाम से पुकारा जाता रहा। दरअसल सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया में हम जो बहुत से ममालिक या शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं वो तारीख के धारे में कई बार बदले, भुला दिए गए या उनकी शक्लें बिगड़ गईं, लेकिन फिलिस्तीन का नाम मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ अंदाज से अदा किए जाने के बावजूद किसी न किसी तरह

अपना 3,000 साला सफर जारी रखने में कामयाब रहा। यह नाम एक जुग्राफी है और एक मुश्तरका याददाश्त की सूरत में आज के दौर तक पहुंचा है। आने वाली किस्तों में हम मिलकर इस याददाश्त की मुख्तलिफ तहों को दरियाफ्त करेंगे। हम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक यानी अरीहा जाएंगे। हम मिट जाने वाले रस्म अल-ख़त का जायज़ा लेंगे और यरूशलम यानी कुद्स के नीचे बनी खुफिया सुरंगों में उतरेंगे। हम आसमान का मुशाहिदा करने वाले दानिश्वरों से मिलेंगे और हज़ारों साल पुराने जैतून के दरख्तों के साए तले खड़े होंगे। लेकिन हर सफ़र का एक नुक्ता आगाज़ होता है। हमारा आगाज़ भी आज के इसी सवाल से हो रहा है जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं। एक नाम किसी सरजमीन की रूह को कितने अरसे तक महफूज रख सकता है। अगली किस्त में हम इस सरजमीन पर गूंजने वाली पहली जबानों को सुनेंगे। हम कनानी, आरामी और उन कदीम रस्म अल-ख़त की कहानियों पर बात करेंगे जिनके बारे में समझा जाता था कि वो खो चुके हैं। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियाँ।